तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सवेड़ा वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुती माह कवन जिथो आकार वेल न पाइया पंडती जे हो वै लेख पुराण वक्त न पायो का

प्राण आखह पड़े करह बखियाण। आखह बरमे आखह इंद आखह गोपी तय गोबिंद आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह केते कीते बुद्ध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेव केते आखह आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे।

गावै तोहनो पौन पणी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे, गावै चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावै इंद इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावै मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले, गावन रत्नों पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावै जोध महाबल सूरा गावै खाणी चारे, गावै खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, से तुदनो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेख कीता अपना जीवत सिदी वडियाई, ज्योतिष भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत, आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साद, संजोग वियोग।

जियो हों कोली जियो कोल कुमाई गुरदर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बाणी चिर हो आ देखे सारिंग पाणी धन सुदेस जहां तू वसिया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हों कोली हों कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ।

भाग हुआ गुरसंत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मह पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हौं कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। तनासरी महला पहला, घर पहला चौप दे इको ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जियो।

पहला यानड़िए मानड़ा काय करे हैं अपनड़ कर हर रंगो की ना माने हैं सौ नेड़ तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे हैं पैकियां देह सलाइया नैनी भाव का कर सिंगारो ता सुहागण जानिए लागी जा सौ तरे प्यारो।

मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई रहाओ। अगम गोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी, जल थल महील भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावां तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावां नित तेरे।

हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुयुगत सुधा हैं, सदैव स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम हैं, सदैवल अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओंगाद रूपे अनादि स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सो सर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप हैं, अछिज हैं, अछूत हैं, कि नरकं प्रणास हैं, पृथ्वील प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदैव सदा हैं, विभुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विभुक्त प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, चाचरी छंद अपंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, अलेख हैं, अपर्म हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अभय हैं, अभूत हैं, अतूत हैं, अनाश हैं, उदास हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सो नित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट शंता प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शंता प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं श्रीक हैं मितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती शंत प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजिर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुस्नल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी दहिंद हैं के राज कर हिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुस्नल जमाल हैं गनीमुल खराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकन हैं हरासुल फिकन हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तल निवास हैं अगंजल गनीम हैं रजाय करहीम हैं समस्तल जुबां हैं कि साहिब की राह हैं कि नरकं प्रणास हैं बहिस्तल निवास हैं कि सर्वल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तल अजीज हैं परम परम ईश हैं समस्तल अदीश हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं कि जुरत जमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के मित्तो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के मित्तो विभूत हैं के मित्तो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग अनंग हैं के मित्तो अपंग हैं मदपार शंत प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशिज अंग आसन भंग उपमा पार गत मितोदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास तिर तर तुरास अजान वाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आज जिना बात अनझंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अनठट अपार आडीठ धर्म अत टीठ कर्म अणबरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंदता प्रसाद करुणालय है अर्कालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्वोबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर हैं विसंबर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खलखंडस हैं परते पर हैं करुणा कर हैं अजपा जप हैं अथपा थप हैं अकृता कृत हैं अमृता मृत हैं अमृता मृत हैं करुणा कृत हैं अकृता कृत हैं तरणी त्रित हैं अमृतेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृता कृत हैं अमृता मृत हैं अजबा कृत हैं अमृता मृत हैं नरनायक हैं खलकायक हैं
विशंबर हैं, करुणालय हैं, निरपनायक हैं, सर्वपायक हैं, पापंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, आकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ताकर हैं, हर्ताहर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रियात छंद नमस्तल परणामे समस्तल परणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह सवैये श्री मुख वाक पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति विनेक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली विद न्यावत शीस न जात विचारे ते पय तो कहाँ पय पूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजित ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत हजराज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे विनय अंत कौ अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब ऐसु विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपते एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सोसाह सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हलैन हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार है सार की धार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरें जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराद उपजौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत पद से जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के परस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे बक ध्यान लगायो नात फिरो लिए सात समुद्र लोक गयो परलोक गवायो
बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसो बैस बितायो। साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशाह को शीस निवायो। को बुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो। कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। को बुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो। कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई। बहर असुर का काठ समाथा श्री अस्केत जगत के नाथा। द्वितीय बान सौंदो अर कर काठ दयो अस्तुज नर नाहर। पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा। पोहपन बृष्ट गगन ते पई सभ न्यान बधाई दई। धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा। खल पवन के सिरजन हारे दास जान मोहले हो बारे। कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दय रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबे तुम कावहो। आप हाथ दय मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिये। सब बैरन को आज संघरिये पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊ। जो बर चाहू सुपमते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है। हु जो सदा हमारे पछा श्री अस्तु जू करिय हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो। आद अंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के।

रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारणा सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरै घरता तेरै सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सालाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईयां कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईयां सदा कुर्बान कीता गुरु विष्टो जिस दियां एह वडियाईयां कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारियां पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजहों क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया एस नो होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कहे नानक लिवै बाजहों क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलविह कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सचै सवारिया कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देह सोई जन पावै पावै ता सो जन देह जिसनो होर क्या करह विचारिया एक भरम भूले फिरह दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिन्हा भाणा पावे कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे आवह संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई है तन मन तन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्य पाई है हुक्म मन्य हो गुरु के रागा वह सची बाणी कहे नानक सुनो संतो।

हाथ दोनों गोडिया ते रखे ने उत्ते सिर रखे थोड़ी दूरों रावी नदी पे वगदी कान जेड़े ने कुछ सुनन दी कोशिश पे कर दे ने ए बीबी पिंडू अनपढ़ है पर मन विच रब दा बड़ा प्यार है तीन दिन हो गए ने इस बीबी नू ए आवाज सुन दे रोज आंदी ए पति नू रोटी खवाण वास्ते आवाज विच ऐसी खिच है इत्थे बैठ के ए रोज आवाज सुन दी अज तीसरा दिन है कदी कदी आवाज सुनाई दिंदी कदी पानी दे शोर विच गुम हो जांदी है पर जदों आवाज सुनदी है ता मन खिंचिया जांदा है कहन लगी मना चल के देखा ए गाण वाला कौन है कहन लगी ढाडी भी सुनी देने व्याहां दे विच गीत भी सुनी देने गाई दे भी ने पर एडी मिठी आवाज अज तक सुनी नहीं चल के देखा भला कौन है गाण वाला।

खाली भांडे सिर ते रख के उस पासे तुर पई जिधरों आवाज आ रही आवाज सुन के जिधरों आवाज आ रही है उस पासे ए बीबी तुरी।

पति नु प्रशादा छका के दुध गर्म कीता, गड़वे विच दुध पाया, छन्ने दे विच सक्कर पा के कपड़े नाल बन के कड़वा सिर ते रखिया, दुध लैके उसे पासे तुर पई जिधर ओ वजंतरी बैठा सी। जद उस जगह पहुंची तो अज वजंतरी का मालक भी नाल बैठा, वो वजंतरी कोई साज वजा रहे है, मालक कुछ गा रहे है। कौन है मालक कौन वजंतरी? मालक है धन गुरु नानक साहब, वजंतरी मरदाना साज वजा रहे। धन गुरु नानक साहब सारंग राग दा

पर बेटा नू होश किते फिर खेया बेटा उठ सिर चुके पर चेरी दा जलाल ना सहार सकी सिर फिर धरती नाल जा लगा धन गुरु नानक साहब ने हुण कृपा कीती अपनी मेहर दी निगाह कीती क्या बेटा निहाल उठ सिर चुके पर अखां विच हुण नाम दी लाली शरीर मानो हल्का फुल हो गया लूणू दे विचों वाहिगुरु दी आवाज आ रही हाथ जोड़े दुध वाला गड़वा के कीता क्या पातशाह आप दियां दितियां दातां विचों दुध लैके हाजिर होई हैं आप जी इसनू प्रवान करो सहबा क्या बेटा संसारी लोग तुहानू दुध पुत्र दी लोड़ हुंदी है दुध तुसी छको पुत्र दा नां लिया फिर मन विच ख्याल आया जे गुरु साहब टुट पैण हो सकदा है इथों मेरी झोली भर जावे हाथ जोड़े के पातशाह ए दुध आप दियां बख्शियां होईयां दातां विच ही लैके आई है आप जी प्रवान करो गुरु साहबां ने दुध दे तीन हिस्से कीते एक आप पीता एक हिस्सा मर्दाने ने पीता एक हिस्सा इस बीबी ने दुध दा पीता सेवा कीती नमस्कार करके वापस अपने घर चली आई।

हरी तू बगैर मैं क्यों जीवा, क्योंकि ओदे तू बगैर ते जीवना कुछ भी नहीं। गुरु साहब जी शब्द पढ़ रहे ने, भेदों का दूर सारे एक दरखत दे ओले लुक के बैठ गए है, देखण वास्ते कि हुण की हुंदा। धन गुरु नानक साहब ने शब्द का भोग पाया, बीबी ने दुध सामने रखे, गुरु साहबां ने दुध दे

सतगुरु जी कहन लगे तो दे यार, बड़े दयाल हां तेरे ते, कुछ मांग लै। दोदा कहन लगा नहीं पातशाह, आप दा दिता बहुत कुछ है। महापुरुषां दे तीन बचन हुंदे ने, तीसरा बचन कीता दोदिया कुछ मांग लै। दोदा कहन लगा पातशाह जे तुठे हो ता ए वर दियो, बहुत सारी जमीन होवे। जिमीदार सी दोदा, बहुत सारी जमीन होवे, लवेरिया मच्छा गावां होन, दो तीन बलदा दियां जोड़ियां होन, सोहने मकान होन। साहब जी कहन लगे ये सब कुछ मिल जाएगा, कुछ और मांग लै। कहन लगा बस पातशाह और कुछ नहीं चाहिए। मर्दाना कोल बैठा है, होली जी मर्दाना कहन लगा दुदिया सतगुरु जी तुठे ने, नाम दी दात मांग लै। ते जिहड़ी चीज बारे ज्ञान ना होवे ओ चीज आपा लैंदे नी। दोदा होली जी कोलों कहन लगा मैनू ता जमीन मझां गावां चाहीदियां ने, मैं नाम की करना है, मेरे किस तों किया तां होली। पर सतगुरां सुन लिया ते नाले हस पए, कहन लगे दोदिया ये सब कुछ मिलेगा, तेरी घरवाली सतसंगण है, तेरी घरवाली दे सदका जा तेनू नाम दी दात भी प्राप्त होवेगी। कई बीबियां इन्ने भागा वालियां हुंदियां ने कि जिन्हां दी सदका कुलां तर जांदियां ने। हुण दोदा भी सतसंगी बन गए, होर भी जिन्ने जिन्ने गुरु नानक दी सोभा सुनी ओह भी आण लग पए। जिहड़ा भी आंदा है फिर होर किधरे नहीं जांदा, जंगल दे विच आनंद ही आनंद हो गया हर पासे। बड़ी संगत आन लग पई, बरसातां दे दिन सन। दोदे ने बेनती कीती पातशाह बरसातां आ गईयां ने, संगत बहुत आंदी, आप दा हुकम होवे दो वड्डे वड्डे छप्पर बना दीए, एक लंगर वास्ते और एक जिथे कीर्तन हुंदा है। गुरु साहबा ने आग्या दिती ता बड़े सोहने छप्पर बन गए अते संगत हम हम आके पहुंचन लग पई। पर कहंदे ने जिथे सच होवे उथे सच दे दुखी भी जरूर हुंदे। गुरु नानक साहब दी सोभा कुछ लोगों को बर्दाश्त ना हुई, उन्होंने सलाह की कि किसी तरह धन गुरु नानक साहब नु इस जगह तो उठा देना।

कि तन गुरु नानक साहब की शोभा बड़ी हो रही है, इस नु खत्म करना चाहिए। दुनिया विच ऐसे इंसान भी ने जेड़े ना चंगा काम करते ने, ना किसी नु करन दिंदे, ना आप रब वाले पासे जाना ते कोशिश होंदी है कि ना ही दूसरा कोई जावे। ऐसे सन ए लोग, ए सारे जने इकट्ठे होके लाहौर जा पहुंचे, जिस जगह धन गुरु नानक साहब बैठे सन, ए एक मुसलमान हाकम करोड़िए दी जगह सी। सत कोठियां, सत झंडे झुलदे सन, बड़ा अमीर सी। ओदे कोल जा चुगली कीती, करोड़िया तू लाहौर बैठे, तेरी धरती ते एक साधु ने कब्जा कर लिया, हाली तक कच्चे छप्पर पाए ने, उठाना सौखा, जे पक्के मकान बना ले, जे पक्के मकान उस साधु ने बना ले तो उन्हें उठाना औखा हो जाएगा, होने ही कुछ कर। ये सुन के करोड़िए नु बड़ा गुस्सा आया, कह लगा अच्छा मेरी धरती ते साधु ने कब्जा कर ले। उस वेले हुक्म दिता 100 जवान डांगा वाला तैयार किया, अपने हाथ विच भी डांग फड़ी, करोड़िया घोड़े ते चढ़िया ते धन गुरु नानक साहब नू मारन वास्ते तुर पिया। कहन लगा जेड़ा भी उत्थे साधु ते संगत बैठी है सारिआं नू मार मार के धरती ते विछा देंगा। तुर पिया लाहौर तो, पर जदू अध विच आया घोड़ी त्रबकी, करोड़िया थले डिग पिया घोड़ी तू, लत टुट गई, फिर वापस चला गया। एक महीने दे बाद ठीक होके फिर 100 जवान नाल लिया, फिर धन गुरु नानक साहब नू मारन वास्ते तुरे। इंसान जदू पाप करन लगता है कई वरी ठोकर लगे समझ आंदा है, ते कई वरी ठोकरा लगदियां नहीं तां भी नहीं समझदा, पर एक समय ऐसा आंदा है कि जदों इंसान नू झुकना ही पैंदा है। करोड़िया अज फिर ठीक होके धन गुरु नानक साहब नू मारन वास्ते तुर पिया, जेड़ा कि गुरु नानक मरिया।

आनंद नहीं है। इसलिए आओ बारों बिरतियां नूं मोड़ो, जिथे भी सेवक की आवाज पुज रही है हजूरी विच वसो, तां अमृत कीर्तन अमृत बरखा होएगी अमृत कीर्तन दी। इसलिए आओ सारे प्यार

ऐसों से तंदुरुस्त के पाख्या जी समाधि आवाज ज्ञान जी की कर रहे हो तो हजूर कह

भाई कमाई करोगे तो गलती बातें कदे कर अच्छा भी तो कह रही दुनिया क्यों नहीं करना कुछ ना पे पीओ जे रैपर भी बड़े पैदा होता है सारी स्थिति के माध्यम वर्ग करना यह भी बड़ा ज्ञान न कभी होती है सपना सरदा आकार कर्म ले पाइए हो हिकमत साहबा ने कमाई की पैसा पैसा जी दिखते हैं बापे पाया बख्त नी बख्त वास्ते साढ़े वास्ते बापू का सारा खजाना पुत्रा वास्ते नैच पुत्र संभालने से नलैच नहीं खजाना सारा बापू का बच्चे वास्ते अपने बापू वाहेगुरु तो अकाल पुरख साहबा ने जो दास लिया भाई साहब जी ने

रोड़ा से बैठे तकनी ने पहली पौड़ी का दुख थी अपनी कमाई का बधाना पा के भेजी है जिला जोड़ा वाला इमराबाद और जिला गुरु ने विचाई की दास ने सची दर्शन की है पाकिस्तान तो जिला आ गया है तो पहली सात संगत मेखर भावे रोड सन पर जिन्हें रोड़ा उत्ते ठाकुर के पातशाह जी ने समाधि लगाई जो उन्होंने हाथ लाओ तो विश्व वर्गे साई साहब जी जिसमें वेद हार कर रोड़ा की तो करी मिठाई फिर पारी कई तपस्या क्योंकि सानू तपस्वी बनाना चाहिए सानू सब सिपाही बनाना मेरा सिपाही संत भी बढ़े जिथे राजपाल उसके योग भी बढ़े इस वास्ते मार्ग में पहला आप पारी नई तपस्या बड़े पाल हर क्यों बनना महान क्योंकि कर करते भी जाके पैगाम दे दुनिया को वाहगुरु नाल जोड़ना बाबा जी बचन करते सर बाणी कह वास्ते नहीं यह कमाई करके दुनिया को दे गुरु ने पहला आप कमाई वड़े बाबा जी एक बार शिमले तो उपर कुफरी एक जगह है उसके पंच पूर्वमासी का समागम आया जिस तरह अज भाटा वाली पूर्णमासी तो उस जिथे लहर ख्याल आया चलो बाबा जी के दरबार च हाजरियां भरिए कुफरी पहुंचे होर भी संगत दिल्ली तो देहरादून लाहौर जन्म हरियाणा होर किताब शिमले दिया संगत उराते दीवान लगा महाराजा पटियाला सारी सेवा बाबा जी की उन्होंने संभाली हुई बड़ी संगत हुई रात एक दो बजे समाप्ति हुई अमृत वेले फिर कीर्तन तो उस वेले हजूरी राजी सन भाई साहब भाई संतर जिस तरह अजकल बाबा जी ने हजूरी राजी भाई साहब भाई शेर वो किधरे बाहर नहीं वो तो उसे सन गुरु नानक के पातशाह जी हाजर साल जा के साहबान कीर्तन द्वारा हाजरी भर के कीर्तन सुना के उन्होंने चिट्ठी बरसों चौथाई बड़िया मेहनत की उन्होंने बख्शिशा की थी प्यारी खास संगत तो अजकल जिस तरह हजूरी राजी भाई साहब भाई शेर उस वेले भाई संता सिंह जी राजी अमृत वेले कीर्तन होया पूर्णमासी तो दूसरे दिन हाउ किस कोल घुमाया गुरमुख जी ने गरीब से उसकी मर्यादा पूर्णमासी तो दूसरे दिन यही कीर्तन बड़े आबादियां को लैके इतना आनंद बनया कीर्तन का कि राजमाता इतने प्रभावित हुए आप संगत की उठ के बाहर

अमृत जल धारा राम, अमृत जल धारा पूर्ण चावल सगल मनोर पूरे, जय जय कान भरो जगंत लाभे सगल पूरे, पूर्ण बुद्धि रत देव लासी जस

अष्टपदी पूरे गुरु का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर करो हर तन के पर लिहो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उतारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह अतार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होते उतारे आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाचे सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे परगटे गोपाल महांत के माथे नानक उधरे तिन कह साथे सरन जोग सुन सन्नी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरीन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसैस होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊंच पाए स्थान बहुत न होवे आवन जान हर तन खाट चल

कोई मेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करां। गुरु अमरदास सच्चे

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जाए। साथ संगत बोलो श्री तुरते हुए पिछली प्यारी अदा।

जो सास समृद्धि अति अप्रचलित राग जिसनू गुनीन सज्जन चारू पेशी कहंदे ने, अप्रचलित राग है, लेकिन आप संगतां दी कृपा नाल गुरु सच्चे पातशाह दी रहमत नाल आप दे दास ने इस नू गाया है। बड़ा ही अप्रचलित राग है, बहुत ही कोमल राग है, मन नू पौंदा है, मन नू चंगा लगदा है। एक बार इसका अंतरा स्थाई श्रवण करो, फिर दूसरा शब्द जी।

ओ वाहिगुरु परमात्मा, आई डू नॉट आस्क ऑफ एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, बट लेट दिस फैमिली ऑफ माइन लिव हैप्पीली इन कंटेंटेडनेस इन टू द फ्यूचर. सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा. मे माई सिख बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड फॉर ऑल इटर्निटी.

चौपी बादशाही दसवी हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपार हमरे दुष्ट सवै तुम कावो आप हाथे मोए बचाव सुखी बसे मोरो परवार सेवक सिख स्वै करतार मुर छा निज कर दे करिए सब एरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं

जब उधर करा कर तारा परजा दर्द तब दे अपारा जब आकर कर हो कबू तुम मैं मिलत दे तर सबू जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लम आत अनिल अनाथ असम ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमान महामूढ़।

आप अपनी बुद्ध है जेती पर्ण भिन्न भिन्न तुहते थी तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिजा प्रथम संसारा एक के रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं कूपा अंड जे रज से जकीनी उत्पुछ खान बहु रच दीनी कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट पयो संग्रह कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंपव आज गात स्वरूप स्वयंपव अमृत छा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो।

जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दोख तह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट न आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरष्ट रहे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक मोह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छा छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सवार काल पास ते तय उबारा जिन्नर नाम तहारो कहा दर्द दुष्ट दोखते।

सत्संगी सज्जन गुरु के प्यार वाले जितने भी माई पाई साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पवित्र कदमों की हाजिरी भर रहे हो

सो चाम च डुबे हो आखन लगे नहीं बेटा साधना दिस है जग विच कोआ कोई संत नहीं कोई महापुरुष नहीं सब पखंडी हैं सब डंबी हैं कोई महापुरुष नहीं रहा। ते गुरु गोविंद सिंह पातशाह 9 साल की अवस्था च आखन गए बापू जे मैनू हुक्म करो तो मैं दसा आखनगे बेटा तेरी निगाह है कोई आखनगे महाराज मैं ऐसा संत दसांगा मैं ऐसा महापुरुष दसांगा मैं ऐसी व्यक्ति दसांगा मैं ऐसी जोत दसांगा जिदे एक एक खून दे तुबके तो धर्म पैदा होएगा जिदे एक एक खून दे कतरे तो धर्म उत्पन्न होएगा धर्म की राखी होएगी। आखनगे ओ कौन आखनगे महाराज आप तो वड्डा संत होर कोई नहीं है पिता जी आप तो वड्डा होर कोई महापुरुष नहीं होर कोई तपस्वी नहीं। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह आखन गए बेटा एक ही तू कह रहे हैं आखन का मारे मैं ठीक कह रहे हैं बापू जी तुसी इस धर्म की खातर हिंदू धर्म की खातर अपनी कुर्बानी दे दियो बलिदान हो जाओ पेट हो जाओ कुर्बानी दे दियो आखन गए तू यतीम हो जाएगा। ते गुरु गोविंद सिंह पातशाह कहंदे ने उते उधर जब मात के तब राखा ता जोए अब तो पए 9 साल के क्यों ना सहाई होए हुण ते मैं 9 साल दा वा उस वे मां के पेट जिन्हें राखी की है हूं भी राखी करेगा वह प्रतपालना करता है जिन्हें की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन कर पछ पशु नग नाग नराद सर्व समय सबको प्रतपाल है पोकत है जल में थल में पल में कल के नहीं पर कर्म विचारे दीन दयाल दया निध धोखन देखत है पर देत ना हारे ये कोई बोलो साधना। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह ने पंडतों नूं कहता पंडतो जाओ औरंगजेब नूं कह दियो अगर साडा गुरु अगर साडा मुर्शद कुर्बान हो जाएगा पेट हो जाएगा कुर्बानी दे देगा ते तुहाडा धर्म बच जाएगा। इसे तरह ही उन्हां पंडतों ने जाके कहा सानू ना खत्म करो हिंदू धर्म ते जुल्म ना करो साडे गुरु मुर्शद नूं मुसलमान कर लो साडे मुस्लिम मुर्शद नूं अगर तुसी कुर्बान कर सकते हो अगर वह कौम च आ जाए तुहाडी विच तां बच सकदे एक बार बोलो साधना। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अपना खून क्यों डोलिया अपना खून इस करके डोलिया कि हिंदू धर्म की खातर इस जनेऊ की खातर इस तिलक की खातर। ते गुरु गोविंद सिंह पातशाह का वह खालसा वह हूं भी राखी करता पे अज इन्हें जंग होए अज इन्हें युद्ध होए पाकिस्तान दे खालसे ने अगे होके लड़ाइया लड़िया खालसा हर मैदान जंग विच अगे है और हुण भी खालसा अगे ही चलता आ रहा है। ए बहु बेटी दी राखी लई है ए जुलम दी राखी लई है ए मजलूम दी राखी लई है खालसा बनाया ही इसे करके है कि धर्म दी राखी वास्ते। एक बार बोलो सतनाम समा नहीं एदे ते विस्तार किया जाए जो शब्द पढ़ रहे सां गुरु गुरु जप मीत हमारे

अजकल घोड़िया का व्यापार बड़ा अच्छा है। पिता जी जेड़ा मैं व्यापार करना पिया सौदागरी करना पिया उस तो वेल नहीं। बेटा तू कि सौदागरी करना पे मैनू तो वेला ही नजर आना और ना तेरिया गल्ला समझ आ।

जे होर कोई काम नहीं करना तो नौकरी कर ला। तैनू मैं कोई नौकरी दिवा दिंदा हां।

जलती सब पृथ्वी दिसे आई, सारी पृथ्वी जलदी हुई नजर आई। तो फिर चढ़िया सोधन तर तो लकाई, उन्हें इंसानों ने दुखी वेख्या सी कारू दे राज विच, भुखे वेख्या सी भोजन कीते तो बिना ही सौंदे सन बहुते लोग।

माया और पंडोरा पिटवा दिता सी कि किसी को एक भी पैसा निकल आया तो उसनु सजाए मौत हो जाएगी। ते कारो दे कहर तो सब डरते सन। कुछ दिन जब कोई पैसा ना आया अमीरां वजीरां नाल सलाह कीती कि बस सब देश खाली हो गया किसी को पैसा ना। ता किसी ने एक सलाह दीती कि एक होर भी तरीका है। ये तो डर का तरीका सी हुण लालच का कि जे कोई एक भी पैसा लिया के देवे मैं अपनी लड़की का रिश्ता और अद्धा राज देंगा उसे। जदों वेखिया कि किसी कोल भी पैसा नहीं तो एक नौजवान मन चला अपनी मां के पास जाके रोन लग पिया। कहिंदा मां राज मिलदा जे बादशाह की बेटी का रिश्ता। मां ने बथेरा समझाया कि मैं तो उम्र गवाई है इस राज विच कदे सुख नहीं वेख्या। इसने तो गरीबां का खून नचोड़िया है कदे किसी नूं सुख नहीं दिता। तू की उम्मीद करदा है। झूठी गल ते इतबार ना करदा। खेड़े पै गया कि किधरे कोई लुको के रखिया हो। बहुत दिन जिद फड़ी रखी तो मां ने दसिया कि मेरे पास तो नहीं रखिया पर जदों तेरे पिता नूं दफनाया सी तो उसके मुंह विच एक पैसा रखिया। कबर खोद लै उसके मुंह विचों कढ लै वो तो हुण रस्म पूरी हो गई। जे वो तेनों मिल जावे कहिंदे ने उसने इसे तरह कीता अपने बाप की कबर खोद दिती। उसने मुरदे शरीर विचों पैसा कढ लिया कारू दे अगे चाई चाई जाके रखिया। उसने नाले तो उसनु बंदी बना लिया गिरफ्तार कर लिया नाले पैसा ले लिया। पुछया कित्थों लिया है। उसने दसी गल सारी कहानी तां कारू ने सारियां कबरां खुदवा दित्तियां।

0: और बाबा जी का चेहरा दर्शन करके इतना आनंदित होया। कहन लगा, महाराज कृपा करो, आओ मेरे महला विच। महला विच चले गए। रोज सत्संग होने लगा तो गुरु जी उसनु उपदेश करदे ने। रोज उसके मन की मैल लेंदी है, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लई है ओ धोए, भरी मत पापा के संग, ओ धोपे नामे के रंग। ज्यों ज्यों बाबा जी की संगत करदा मैल लेंदी। एक दिन गुरु जी कहन लगे, कारू हुण असी जाना है। मित्रता की एक निशानी ऐ लै फड़ सूई, ऐ सूई ए मित्रता की निशानी है, सांभ के रखी। उसने पकड़ ली, कहिंदा जी बड़ी मेहर कीती, निशानी दिती। गुरु जी कहन लगे, पर यह निशानी असी तेरे को लै लैनी है। कदों लैनी है? गुरु जी कहन लगे, जदों मर के पहुंचांगे उस दरगाह विच, उस खुदावन की दरगाह। जदों तू पहुंचेगा ना, यह सूई लै आवी ते मेरी सूई मैनू उठे वापस कर दे। वो कहन लगा, जी मैं मर के सूई तो नहीं ले जा सकता, यह बचन झूठा किवें करा, तुहाडे नाल वादा किवें करा, मैं सूई नहीं ले जा सकता। क्या गुरु जी कहन लगे, कारू ये 40 गंज लै जावे ना, ये जड़ी जोड़ी है माया गरीबां दियां झुगलियां विचों भी कढ लई है, मरियां दियां कबरां विचों भी कढ लई है, ये नाल लै जावेगा, सूई तां ले जा नहीं सकदा। समझ आ गई, चरण फड़ ले, रोण लग पिया, आख्या गरीब नवाज कृपा करो। तां गुरु जी ने उपदेश दिता सी, हुण तेरा पार उतारा इवें होवेगा, जिस तरह लुटी है उवें बंड गई। सदा वरत लंगर ला दे, देग चला सारे देश विच, और सब नूं वस्त्र बंड दे, और थां थां ते धर्मशाला बना दे, संगत हो दे। इतिहास विच जेकर आउंदा है उन्हां शब्दां च गुरु जी ने बचन कीता,
1: देख चलावो सगले देशन।
0: एकारो सारे अपने देश विच देख लंगर चला दे, कोई भुखा ना रह जाए।

कुछ देर बाद फिर आई। उसके पुत्र मिले पूछा भाई वो बैल किथे, कह लगे जे तुसी गए तो दूसरे दिन चढ़ाई करेगा। यह गुरु जी का कौतक, उसका बेड़ा पार करना सा। नहीं तो पता नहीं कितने कितने बड़े बैल दियां जोना भोगदा, कितनिया चोटा खांदा भाई। सच्चे पातशाह टुट पए से उस खा मखा पार करने वाली गल। जिसने सतगुरु दयाल हो जावे फिर उसने पाप गुण नहीं वेखदा, गुण अवगुण नहीं वेखदा। गुरु जी दयाल।

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुज प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माई लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। He has gifted me with the balm of Lord's name, and I have enshrined love for Him within myself. The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साडे प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया है, इसका भाव देर वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड। देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। इस शरीरा मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की काम किया है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जग आए, तेन शरीर मिलिया सी उस शरीर दे नाल तू की पाया है, की अचीव किया है। देखते हैं कि यह शरीर तेन दिता सी, इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ए इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ए इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, पूंडी चाल इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत

this is what we have done. ऐसी कीता है. स्वाद, sensual pleasures, बाद लड़ाई झगड़ा, माए बाप पूत हित प्राता, कहते हैं किसी ही बात कहात किसी ही पे सगले लर लर मुआ बात बात विवाद. हरेक दे जीवन च बात विवाद है, हरेक दे जीवन च बात विवाद, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी पुत्र नाल नहीं बनती, किसे दी धी नाल नहीं बनती, किसे दी सहुरे नाल नहीं बनती, किसे दी सस नाल नहीं बनती, किसे दी पति नाल नहीं बनती, किसे दी पत्नी नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती. बाद साढ़े जीवन च बाद बहुत है, झगड़ा बहुत है, माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मिलो दुआ, किसी ही बाद काट किसी ही पै सगले लर लर मूह, किसे दे थोड़ा जा काट किसे दे थोड़ा जा वद, सारे केंदे लड़ लड़ के मर रहे हन. इस चीज ए रतन जन्म जिहड़ा गवाया गया, मिलिया किसी होर कारज दे वास्ते. स्वाद बाद ईरख, फिर ईरखा ईरखा, मद माया अते माया दे नशे दे विच, मद दे विच, स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया. इन्हां चीजां दे नाल लग के रतन जन्म गवा दिता, तेनूं इस वास्ते दिता सी, तेनूं इस वास्ते ये प्राप्त होया सी. प्राप्त इस करके होया सी कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया. यही तेरा एक मौका सी गोविंद नू मिलन दा, गोविंद नू मिलन दा, उस नू मिलन दी ये जो वारी सी ये तू एना चीजां दे विच ही चुकाती है, एना चीजां दे विच ही वेस्ट करती है. तो फिर महापुरुष ताड़ना नाल भी आखदे हन के अंधले क्या पाया जागाए, कहंदे हन ए शरीर मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, तू की कम कीता है. बाणी च फरमाया है कि असी किस तरह अपना जीवन गवाने हैं. ये तेतों हिसाब तेतों ए सवाल ये तेतों लेखा पुछया जाना है. कहंदे हन

सत्संग मिले सो तरिया मेरे माधव जी, सत्संग मिले सो तरिया गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा कर कर बाबा गाविए बज्जल ताल मृदंगर बाबा भगत उछल होए आया पत उदाहरण अजब अजाबा चार वर्ण एक वर्ण होए चार वर्ण एक

0: संगत कैसी जानी है।
1: केड़ी संगत, कैसी संगत, केहो जी संगत।
0: सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम विखानी है।
1: ओ संगत जिथे एको नाम दी आराधना हो रही,
0: सारे एक नाम दे नाल जुड़े ने ओ साध संगत। साध संगत मिल होए तराबा,
1: ते संगत करन दे नाल वस्तु केड़ी मिलदी।
0: बिसर गई सब तात पराई।
1: इंसान कितनी भी कोशिश करे तात पराई नहीं छड़ सकता। तात पराई दा भाव है जलन, ईरखा, किसे नु वेख के जलना। तात पराई नहीं छड़दा, पर साहब आखदे ने जीव जदो संगत विच आ जांदा है ना सब कुछ छड़ जांदा।
0: बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई।
1: कितना संगत विच आउण दा लाभ है।
0: जदों संगत विच आउंदा है तात पराई भुल जांदी। इत्थे ही बस नहीं, ना को बैरी नहीं बिगाना।
1: वैरी भी सज्जन नजर आउण लग पैंदा,
0: दुश्मन भी मित्र लग पैंदा,
1: क्योंकि संगत विच आ गए।
0: ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बने आई।
1: ये प्राप्त किवें होया? जो